0: तक लेके जाने को है।
1: कितन
0: सियारियो रूप की तपसाओ को खुआओ पुरित कवं कहा विचार जो तू पावे स बलिकार असंक जाप असंक बाओ असंक पूजा असंक चप्ताओ असंक वेद पथ
1: असंक जोर मन रहे उदास
0: असंक पग कुंगियान विचार
1: असंक साथी असंक दाथार
0: असंक सुर

0: कोय
1: जसुचे को जाने सोय
0: जेवर आप जने आप
1: नानक न दुरी करनी दा
0: बहुत कर्म किया न जाए केते मंगे जो तपार केते कब तुते विकार केते मुरे काई काए एवी दात्री दातार हो राक न सके कोई ओ जाने जितिया मकाए आगे सेवे के इके नानक पच्छाई पतिशाओ
1: हमों

0: आके परे करे विद्यान
1: आके परे में आके
0: आके गोविते गोबिंद
1: आके ईश्वर आके सर
0: आके केते कीते बुद्ध
1: आके दानव आके दे
0: आके सरमन जन से
1: केते आके आके न पाए
0: केते कर के रुतु चाए
1: केते केते और करे
0: ताक न सके के इके नानक जन सच सोए तालिक्या सिर गवर गवर वाजे नारायण के शंकर के ते गावन हारे गावे तुनो पन पनी वे संतर गावे राजा धर्म द्वारे गावे ईश्वर वर्मा देवी सोहन सदा सवारे गावे सिद्ध समाधि अंदर गावे सद विचारे गावन परन परन रखी स जुजु वेदनाले गावन रतानु परि तेरे असत्य रत्नाले गावे कंदमल दर बंदा कर कर के तारे पुर के ते गावन से मैं चित न आवन नानक या विचारे
1: सोए सरा सच साय सच सच नाय
0: हे वी हो सी जाए रजा सी रचन चिन रचाए
1: रंगी रंगी बाती कर कर जिनसी माय जिन पाए
0: कर कर वे के किता अपना जीव तिस की बरियाए
1: जो ठीस बावे सोए कर सी हुकम न कर न जाए
0: सो बदी साव सा बदी साहेब नानक रहन रचाए किंता काल क्वारी काया जुगतंता प्रतीत आदेच से आदेश भुगत ज्ञान गया बंदार कर कर बजनाद संजोग विजोग दुख छलावे लेके आवे बाग आदि नील नाद नहा जुजुए गोवेस एक संसारी एक बंदारी एक लहे दीवन ओवे के ओन नद्र नावे वाउतय ओविदन आदि नील नाद नहा जुजुए गोवेस ज्योत पावे सोए कवर नानक सच्चे की सच्ची कार आदि नील नाद नहा जुजुए गोवेस लख लखेरा आखिए एक नन जगदीश सुंगला खश की किता आयेरीस आकन जोर जुपे न जोर जोर न जीवन मर न जोर जोर न सुरती की हम विचार जिस जोर कर वे के सोए राति रुति तिथि वार परम पनी कनी पत्ताल तिस विस्तर तिरति धरम साल तिंके नानन के नान सच्चा सच्चा दरबार नानी करम पवे निशान नानक जपे जाए ज्ञान खान का आको करम केते वर में करी करिय रूप करम के केते ईशा सुर केते मंदल देश केते देव तरन सुम केते रत समन्ना Ketya surti seva kete nanakyantana ant.
1: Gyan khan me gyan purchan.
0: Tite nat kod otanant.
1: Sarv khan ki bhani rup.
0: Tite garye garye va utanup.
1: Takya gala katya na jaye.
0: Jeko kahe kache pachatai.
1: Tite garye surat mat man bun.
0: Tite garye sarasada ki sut.
1: Karam khan ki bhani jor.
0: Tite horna ko e hor.
1: Tite jor maha balsor.
0: Timme ram garya barpur.
1: Tite sito sito me mamaye.
0: Take rupna katna jaye.
1: Nahoy marna tage jaye.
0: Jinke ram se manmaye.
1: Tite bhagat se kelo.
0: Garyanan sacha mansoye.
1: Sacha khan vise narankar.
0: Kar kar veke nadranhal.
1: Tite khan mandavarvan.
0: Jeko kahetan tan ant.
1: Tete lo lo akar.
0: Jivji hukam tave tivkar.
1: Ekhe vikse kar vichar.
0: Nanakatana kar

अंखे बर बाप दे रे चिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम ले चुबितासे मैं संगर गुन प्रगास चिन हर हर